0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है माता मरियम के जन्म दिवस ख्रिस्तियाग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने विला नोवाभा में माता मरियम के जन्म का ख्रिस्तियाग अर्पित करते हुए माता मरियम से निवेदन किया कि वे विश्व और हमारे बीच शांति प्रसारित करने में मदद करें। संत पापा ने 7 सितंबर को माता मरियम के जन्म का समारोही मिसा बलिदान जिन जानो अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम तीर्थ में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, परम धर्माध्यक्षीय काल के शुरू से ही मैंने जिन जानो माता मरियम एक अच्छी सलाहकारिणी तीर्थ स्थल आने की तीव्र चाह रखी, जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को अपने मातृत्व में सहचर्य, अपनी प्रज्ञा और अपने पुत्र के लिए उदाहरण भरे प्रेम से भर दिया है, जो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु है। उस खुशी में मैं पुनः आप सबों के संग पवित्रतम कुमारी मरियम के जन्म का जागरण मनाने और इस अद्वितीय मानवता को नन्ही कुमारी को समर्पित करने आता हूँ, क्योंकि इस शक्ति से उसका जन्म होता है जो एक अंकुर की भांति है, लेकिन यह हमारे लिए ईश्वरीय निष्ठा की निशानी है। हाँ, मरियम एक अलग भोर का तारा है, हमारे समय की दुनिया में बुराई से मुक्त। हमारी मुक्ति उनमें आती और हमें परिवर्तित करती है, जहाँ पुत्र में हम ईश्वर के संतान बनते हैं। हम उनसे अच्छी सलाह की मांग करें, जिससे हम दिव्य वचनों का स्वागत कर सकें और साहसपूर्ण और विवेक में निर्णय के माध्यम सच्चे मन परिवर्तन का साक्ष्य दे सकें। संत पापा लियो ने कहा, इस संत अगुस्टिन की प्राचीन उपस्थिति के स्थल में मैं सुसमाचार, जिसे हमने अभी सुना है, लौट कर आता हूँ, जिसे विला नोवा के संत थॉमस ने अपने जीवन से दरिद्रों की सेवा में घोषित किया, जो हमें सच्चे विश्वास की गहराई तक जाने में मदद करता है। वे मरियम के छोटेपन विरोधाभाव को समझते हैं, जो हमारे लिए मुक्ति की योजना की केंद्र बिंदु है। हम स्वयं से पूछ सकते हैं, ज्वाकीम और अन्ना के लिए एक लड़की के जन्म का अर्थ क्या हो सकता है? संत थॉमस इसके उत्तर में कहते हैं, मैंने इस पर कई बार चिंतन किया है। वे लिखते हैं, मैंने इस बारे में सवाल किया है कि सुसमाचार लेखकों ने, जिन्होंने योहन बपतिस्ता और प्रेरितों के बारे में लंबी चर्चा की, मरियम को संक्षेपित क्यों करते हैं, जो सारी चीजों को अपने अनुभव और व्यक्तित्व में सारगर्भित बनाती है। हमारे लिए क्यों उनके जन्म, शिक्षा, आदतों, गुणों जिससे वे पोषित हैं, अपने पुत्र के संग उनका संबंध कैसा रहा, वे उनके संग कैसे पेश आई, वे स्वर्गारोहण के उपरांत शिष्यों के संग कैसे रहीं, का जिक्र नहीं किया जाता है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। ओ सुसमाचार लेखकों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्यों आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहते हुए हमें इस आनंद से वंचित किया है? क्यों आपने हमें इस बहुप्रतीक्षित खुशी से अछूता छोड़ा? संत पापा लियो ने कहा,
2: troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
1: कि इन शब्दों में हम अपने लिए विश्वास की महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। सुसमाचार लेखकों को सवाल करते हुए उनसे वाद विवाद और साक्ष्यों के संग वार्ता में हम अपने को मित्रों स्वरूप पाते हैं। वास्तव में हम ईश निवास में रहने वाले संतों और सदस्यों के संग निवास करने वालों के रूप में हैं। मरियम से हम अपने विवेक में ईश्वर से बातें करना, उनसे सवाल करना और घटनाओं को परिभाषित करना सीखते हैं। हम उन्हें अपने हृदय के अंतस्थल में संजो कर रखते और उनसे संयुक्त होते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार यद्यपि संत थॉमस को अपनी गोपनीयता का उत्तर देते हुए प्रतीत होता है, हमने इसके बारे में सुना, यह हमारे लिए मरियम की उपस्थिति का जिक्र करता है, लेकिन शब्दों में नहीं। मरियम की उपस्थिति और उनके गर्भ में उनके पुत्र की हलचल सारी कहानी को बयां करती है। मरियम की उपस्थिति वंशावली की ओर इंगित कराती है, एक अप्रत्याशित नएपन की तरह, जो न केवल व्यक्तियों की आशाओं को परिवर्तित करता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को घोषित करता है। योसेफ जिन बातों को सुनते, निर्णय लेते और उन्हें पूरा करते हैं, वे हमारे लिए ईश्वर के प्रति उत्तर और मरियम की उपस्थिति को व्यक्त करता है, जो सारे वार्ता और कहानियों से परे जाती है। मरियम में हम मुक्ति को पाते हैं, ईश्वर हमारे संग हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संत थॉमस आगे लिखते हैं, कुंवारी मरियम के कार्यों की चर्चा नहीं करना जैसे कि संत पौलुस के कार्यों के लिए किया गया है। इस बात पर चिंतन करना हमारे जेहन में एक बात को लेकर आती है कि यह पवित्र आत्मा को प्रिय है, और सुसमाचार लेखक स्वतः ही मरियम के संबंध में अपने को शांत रखते हैं। इसका कारण कुमारी की महिमा करना है, जैसे कि हम स्तोत्र 44 के पद 14 में पाते हैं, जिसके संबंध में चर्चा करने के बदले हम कल्पना कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए उनकी कहानी है, जिसका शीर्षक यीशु का जन्म उनसे हुआ अपने में काफी है। इससे अधिक और आप क्या जानना चाहते हैं? इससे बढ़कर आप मरियम में क्या खोजते हैं? यह जानना हमारे लिए काफी है कि वे ईश्वर की माता हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस रहस्य के सम्मुख हम अपने को विस्मित पाते हैं, हम इसे सहज ही नहीं ले सकते हैं। हम एक बच्ची के जन्म का त्योहार मनाते हैं, जो सृष्टिकर्ता की माता होने के लिए चुनी गई, ईश्वर की माता जो हमें बचाते हैं। यद्यपि उनका जन्म एक साधारण बच्चे की तरह हुआ, जैसे कि हम नाती पोतों को अपनी बाहों में लेते हैं, आज हम उन्हें एक ऊंची पदवी, नारी और रानी की संज्ञा देते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना अपने में साधारण और गुप्त है, यद्यपि वह शक्तिशाली और परिवर्तनशील से कम नहीं है। इस भांति मरियम की तरह हम भी ईश्वर के संतान के रूप में अपने को पाते हैं कृपा के द्वारा। इसके साथ ही निश्चित रूप में उनकी चाह चुनाव में और उनके मार्गों में आगे चलने के द्वारा यीशु ख्रिस्त में ईश्वर ने नम्र इतिहास की स्थितियों और अपने श्रेष्ठ प्राणी का चुनाव किया है, जिससे वे अपने राज्य के अद्वितीय रूप को प्रकट कर सकें, जिसमें घमंड का कोई स्थान नहीं है और जिसमें हम सृष्टि, सेवा और जीवन के चिंतन की सर्वशक्तिमता को पाते हैं। विला नोवा के संत थॉमस आगे कहते हैं, हम अपनी कल्पना को दौड़ने दें, अपनी समझ को विस्तृत होने दें और अपनी आत्मा को एक युवा नारी की तस्वीर से रेखांकित करें, जो अति शुद्ध, सौम्य, सुंदर, भक्तिमय, नम्र, कोमल, कृपा से पूर्ण, पवित्रता में समृद्ध, सभी गुणों से पोषित, हर आदर्श से ढकी, ईश्वर को प्रिय है। हम अपनी ओर से जितना हो सके उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। संत थॉमस हमें इस अति सुंदर कल्पना हेतु निमंत्रण देते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं, पवित्र आत्मा ने लेख में उनका जिक्र नहीं किया बल्कि उनकी छवि को हृदय के अंदर रेखांकित करने की प्रतिज्ञा की। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि यही कारण है कि चिंतन प्रार्थना में दुनिया जिन बातों की चर्चा नहीं करती, हम उन्हें देखते हैं, वे पहले से उपस्थित हैं, वे चीजें जो अदृश्य हैं, यद्यपि उनमें एक नई तरह की शक्ति भरी है। यह अपने में कल्पना नहीं है बल्कि यह भविष्यवाणी है, हमें इसकी जरूरत है। जब हम विनाश और अनिश्चितता को पाते हैं, जिससे हम ईश्वर के कार्य को देख सकें और उनकी महिमा कर सकें। संत पापा ने कहा कि छोटे बेतलहम में नबी मीका ने शांति के राजा के आगमन का एहसास किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं जिसकी शांति में हम जीवन यापन करते हैं। आज नन्ही मरियम की ओर आते हुए हम याचना करें कि उनके जन्म का महोत्सव शांति को प्रसारित करे। हम शांति की कामना करते हैं जो हमारे मध्य उपस्थित है, जो सीमाओं और हमारे हृदयों में अंकित है। यह ईश्वर का उपहार है, पुनर्जीवित ईश्वर की सांसें, पवित्र आत्मा के कार्य। आइए हम अपने अंदर शांति को बढ़ने दें, यह विश्व में प्रस्फुटित होगा। और अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम इसकी प्रेरिताई में हमारी सहायता करे।
2: La madre del buon consiglio ci accompagnerà in questa missione.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कार्तिक कलीसिया कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है। संत पापलियो चौदहवें ने इस विशेष दिन की याद करते हुए पर्व के रहस्य पर चिंतन किया। उन्होंने एक संदेश में लिखा, आज हम एक छोटी बालिका के जन्म की खुशी मना रहे हैं, जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की मां बनने के लिए बुलाया जाएगा। फिर भी वे एक छोटी बच्ची के रूप में पैदा हुए हमारी गोद में, हमारी बेटियों और पोतियों की तरह। हम उन्हें सबसे ऊंचा एवं महान नाम देते हैं, जैसे महारानी, सर्वश्रेष्ठ नारी इत्यादि। लेकिन ईश्वर का रास्ता आसान और शांत था और है, यद्यपि वे कम शक्तिशाली और कम परिवर्तनकारी नहीं हैं। पश्चिमी अफ्रीकी युवा दिवस 2026 7 सितंबर को घाना के आकरा में शुरू हुआ। 16 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के युवा कैथलिक इस विषय पर एक साथ एकत्रित हैं। हिम्मत रखें युवा कैथलिक पश्चिम अफ्रीका में शांति और आशा के एजेंट एवं प्रवर्तक। पहले दिन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और घाना की संस्कृति की जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद रोजरी और चिंतन के साथ पौत्र यूखरिस्त की आराधना की गई। मंगलवार 8 सितंबर को युवाओं ने विश्वास में निहित गवाही में सासी विषय वस्तु के हिसाब से विश्वास एवं सांस्कृतिक विषयों पर बात की। क्रिस त्याग के बाद एक कार्यशाला के दौरान डिजिटल सुसमाचार प्रचार, समाचार क्षेत्र में विश्वास, मिशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, विषय वस्तु पर ध्यान दिया गया। फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रतिनिधियों को अपने अपने देशों के संस्कृति, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिला। तीसरे दिन मिशन के लिए सशक्त विषय के तहत नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। धर्मदक्ष के संदेश एवं दिन के वर्कशॉप में दूसरे टॉपिक के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीका में सामाजिक बदलाव में युवाओं की भूमिका, जलवायु न्याय, शांति निर्माण और अफ्रीकी उपक्षेत्रों में आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ एवं लड़ाई जैसे विषयों पर बात होगी। गुरुवार को प्रतिभागी विश्वास एवं सेवा में साथ साथ चलना विषय के तहत तीर्थ यात्रा और एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मिशनरी बुलाहट के बारे में और जानेंगे तथा आगरा की एक पल्ली में मरियम दिवस में हिस्सा लेंगे, जिसमें मरियम पर एक धर्म शिक्षा, वापसी का संस्कार और पौत्र मिसा में भाग लेना शामिल है। मरियम को शांति की रानी और युवाओं के लिए एक आदर्श शिष्य के रूप में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को युवाओं को मिशन पर भेजा जाएगा, जिसकी विषय वस्तु होगी जाओ और आशा को बढ़ने में मदद करो। धर्मदक्ष अपने धर्म उपदेश में उन्हें शांति निर्माता और प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद खाना के प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदक्ष जूलियन कबोरे की अध्यक्षता में पौत्र मिस्सा होगा। अंत में शनिवार 12 सितंबर की सुबह युवा अपने अपने देश लौट जाएंगे और अपने साथ शांति, उम्मीद एवं मेल मिलाप का मिशन ले जाएंगे। पोप लियो चौदहवें ने वेस्ट अफ्रीका के युवाओं को उनके विश्वास की यात्रा में हौसला दी और उन्हें युद्ध एवं संघर्ष से घिरी दुनिया में प्यार, न्याय एवं शांति का संदेश लेकर जीने के लिए आमंत्रित किया। पोप ने घाना के आगरा में पहली बार वेस्ट अफ्रीका युवा दिवस के लिए एकत्रित हजारों युवाओं को अंग्रेजी एवं फ्रेंच में एक वीडियो संदेश दिया। यह कार्यक्रम 7 से 12 सितम्बर को आयोजित है और इसे पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने आयोजित किया है। अपने संदेश में पोप ने 16 देशों के धर्माध्यक्षों की तारीफ की, जिन्होंने युवाओं को अपनी प्रेरिताई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि साथ बिताए ये प्रभावशाली पल आपको विश्वास में बढ़ने और दूसरों से मिलने और खुलेपन जैसे मूल्यों से और भी ज़्यादा बेहतर बनने में मदद करेंगे। पोप ने कहा कि युवा शक, अनिश्चितता और असुरक्षा के बोझ झेलते हैं, जिससे उनके भविष्य की योजना बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब इतने सारे संकट आपके क्षितिज को धुंधला कर रहे हैं, मैं आपको बिना उम्मीद खोए आगे बढ़ने का हौसला देना चाहता हूँ। अपनी मुश्किलों के बावजूद पोप ने वेस्ट अफ्रीकन युवाओं से कहा कि वे बलिदान की पीढ़ी से नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के आज, कलीसिया के आज हैं। उन्होंने पोप बेनेडिक्ट 16 का जिक्र करते हुए कहा, युवा क्षमताओं, ऊर्जा, सपनों और उम्मीदों से भरपूर होते हैं, और कहा कि उनका युवा होना ही कलीसिया और दुनिया के लिए एक खजाना है। पोप लियो ने युवाओं को अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक साथ चलने की चुनौती का सामना करने हेतु आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा, साथ चलने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अलग थलग, अकेला, एकाकी या बहिष्कृत ना हो, लोग संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बने। उन्होंने कहा कि जैसे यीशु ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचाना, वैसे ही युवाओं को भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और अपनी यात्रा में सभी को शामिल करना चाहिए। पोप ने आगरा में एकत्रित हुए युवाओं से कहा कि कलीसिया उन पर भरोसा करती है और उनकी नैतिकता पर यकीन करती है। उन्होंने कहा, अपने शब्दों और कामों से हमारी दुनिया को एक मजबूत संदेश दें जो हर तरह के युद्धों और झगड़ों से घिरी हुई है, प्यार, न्याय और शांति के गवाह बने। उन्होंने उनसे अपनी कीमती जवानी को बनावटी खुशियों और दिखावे की वेदी पर कुर्बान करने के बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद से आगे बढ़ने की अपील की और उन्हें माता मरियम को सौंप दिया। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदश पॉल रिचर्ड गलागर ने असीसी में एक सेमिनार को संबोधित किया जिसको सन फ्रांसिस असीसी के निधन की 800वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। महाधर्मदश पॉल रिचर्ड गलागर ने कहा कि सच्ची बातचीत विविधताओं को खत्म नहीं करती बल्कि सहयोग के जरिए उनके एक साथ रहने के लिए परिस्थिति तैयार करती है। यह सेमिनार इस साल सन फ्रांसिस और मेल मिलाप के रास्ते को समर्पित है। सेमिनार असीसी के मेल मिलाप सभागार में संपन्न हुआ और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है माता मरियम के जन्म दिवस ख्रिस्तियाग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवीं ने विला नुवाभा में माता मरियम के जन्म का ख्रिस्तियाग अर्पित करते हुए माता मरियम से निवेदन किया कि वे विश्व और हमारे बीच शांति प्रसारित करने में मदद करें। संत पापा ने 7 सितंबर को माता मरियम के जन्म का समारोही मिसा बलिदान जिनजानो अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम तीर्थ में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, परम धर्माध्यक्षीय काल के शुरू से ही मैंने जिनजानो माता मरियम एक अच्छी सलाहकारिणी तीर्थ स्थल आने की तीव्र चाह रखी, जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को अपने मातृत्व में सहचर्य, अपनी प्रज्ञा और अपने पुत्र के लिए उदाहरण भरे प्रेम से भर दिया है, जो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु हैं। उस खुशी में मैं पुनः आप सबों के संग पवित्रतम कुमारी मरियम के जन्म का जागरण मनाने और इस अद्वितीय मानवता को नन्ही कुमारी को समर्पित करने आता हूँ, क्योंकि इस शक्ति से उसका जन्म होता है जो एक अंकुर की भांति है, लेकिन यह हमारे लिए ईश्वरीय निष्ठा की निशानी है। हाँ, मरियम एक अलग भोर का तारा है, हमारे समय की दुनिया में बुराई से मुक्त। हमारी मुक्ति उनमें आती और हमें परिवर्तित करती है, जहाँ पुत्र में हम ईश्वर के संतान बनते हैं। हम उनसे अच्छी सलाह की मांग करें, जिससे हम दिव्य वचनों का स्वागत कर सकें और साहसपूर्ण और विवेक में निर्णय के माध्यम सच्चे मन परिवर्तन का साक्ष्य दे सकें। संत पापा लियो ने कहा, इस संत अगुस्टिन की प्राचीन उपस्थिति के स्थल में मैं सुसमाचार, जिसे हमने अभी सुना है, लौट कर आता हूँ, जिसे विला नोभा के संत थॉमस ने अपने जीवन से दरिद्रों की सेवा में घोषित किया, जो हमें सच्चे विश्वास की गहराई तक जाने में मदद करता है। वे मरियम के छोटेपन विरोधाभाव को समझते हैं, जो हमारे लिए मुक्ति की योजना की केंद्र बिंदु है। हम स्वयं से पूछ सकते हैं, ज्वाकीम और अन्ना के लिए एक लड़की के जन्म का अर्थ क्या हो सकता है? संत थॉमस इसके उत्तर में कहते हैं, मैंने इस पर कई बार चिंतन किया है। वे लिखते हैं, मैंने इस बारे में सवाल किया है कि सुसमाचार लेखकों ने, जिन्होंने योहान बपतिस्ता और प्रेरितों के बारे में लंबी चर्चा की, मरियम को संक्षेपित क्यों करते हैं, जो सारी चीजों को अपने अनुभव और व्यक्तित्व में सार गर्भित बनाती है। हमारे लिए क्यों उनके जन्म, शिक्षा, आदतों, गुणों, जिससे वे पोषित हैं, अपने पुत्र के संग उनका संबंध कैसा रहा, वे उनके संग कैसे पेश आईं, वे स्वर्गारोहण के उपरांत शिष्यों के संग कैसे रहीं, का जिक्र नहीं किया जाता है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। ओ सुसमाचार लेखकों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्यों आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहते हुए हमें इस आनंद से वंचित किया है? क्यों आपने हमें इस बहुप्रतीक्षित खुशी से अछूता छोड़ा? संत पापा लियो ने कहा,
2: Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
1: कि इन शब्दों में हम अपने लिए विश्वास की महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। सुसमाचार लेखकों को सवाल करते हुए उनसे वाद विवाद और साक्ष्यों के संग वार्ता में हम अपने को मित्रों स्वरूप पाते हैं। वास्तव में हम ईश निवास में रहने वाले संतों और सदस्यों के संग निवास करने वालों के रूप में हैं। मरियम से हम अपने विवेक में ईश्वर से बातें करना, उनसे सवाल करना और घटनाओं को परिभाषित करना सीखते हैं। हम उन्हें अपने हृदय के अंतस्थल में संजोकर रखते और उनसे संयुक्त होते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार यद्यपि संत थॉमस को अपनी गोपनीयता का उत्तर देते हुए प्रतीत होता है, हमने इसके बारे में सुना, यह हमारे लिए मरियम की उपस्थिति का जिक्र करता है, लेकिन शब्दों में नहीं। मरियम की उपस्थिति और उनके गर्भ में उनके पुत्र की हलचल सारी कहानी को बयां करती है। मरियम की उपस्थिति वंशावली की ओर इंगित कराती है, एक अप्रत्याशित नएपन की तरह, जो न केवल व्यक्तियों की आशाओं को परिवर्तित करता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को घोषित करता है। योसेफ जिन बातों को सुनते, निर्णय लेते और उन्हें पूरा करते हैं, वे हमारे लिए ईश्वर के प्रति उत्तर और मरियम की उपस्थिति को व्यक्त करता है, जो सारे वार्ता और कहानियों से परे जाती है। मरियम में हम मुक्ति को पाते हैं, ईश्वर हमारे संग हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संत थॉमस आगे लिखते हैं, कुंवारी मरियम के कार्यों की चर्चा नहीं करना जैसे कि संत पौलुस के कार्यों के लिए किया गया है। इस बात पर चिंतन करना हमारे जेहन में एक बात को लेकर आती है कि यह पवित्र आत्मा को प्रिय है और सुसमाचार लेखक स्वतः ही मरियम के संबंध में अपने को शांत रखते हैं। इसका कारण कुमारी की महिमा करना है, जैसे कि हम स्तोत्र 44 के पद 14 में पाते हैं, जिसके संबंध में चर्चा करने के बदले हम कल्पना कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए उनकी कहानी है, जिसका शीर्षक यीशु का जन्म उनसे हुआ अपने में काफी है। इससे अधिक और आप क्या जानना चाहते हैं? इससे बढ़कर आप मरियम में क्या खोजते हैं? यह जानना हमारे लिए काफी है कि वे ईश्वर की माता हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस रहस्य के सम्मुख हम अपने को विस्मित पाते हैं, हम इसे सहज ही नहीं ले सकते हैं। हम एक बच्चे के जन्म का त्योहार मनाते हैं, जो सृष्टिकर्ता की माता होने के लिए चुनी गई ईश्वर की माता, जो हमें बचाते हैं। यद्यपि उनका जन्म एक साधारण बच्चे की तरह हुआ, जैसे कि हम नाती पोतों को अपनी बाहों में लेते हैं, आज हम उन्हें एक ऊंची पदवी, नारी और रानी की संज्ञा देते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना अपने में साधारण और गुप्त है, यद्यपि वह शक्तिशाली और परिवर्तनशील से कम नहीं है। इस भांति मरियम की तरह हम भी ईश्वर के संतान के रूप में अपने को पाते हैं कृपा के द्वारा। इसके साथ ही निश्चित रूप में उनकी चाह चुनाव में और उनके मार्गों में आगे चलने के द्वारा यीशु ख्रिस्त में ईश्वर ने नम्र इतिहास की स्थितियों और अपने श्रेष्ठ प्राणी का चुनाव किया है, जिससे वे अपने राज्य के अद्वितीय रूप को प्रकट कर सकें, जिसमें घमंड का कोई स्थान नहीं है और जिसमें हम सृष्टि, सेवा और जीवन के चिंतन की सर्वशक्तिमता को पाते हैं। विला नोवा के संत थॉमस आगे कहते हैं, हम अपनी कल्पना को दौड़ने दें, अपनी समझ को विस्तृत होने दें और अपनी आत्मा को एक युवा नारी की तस्वीर से रेखांकित करें, जो अति शुद्ध, सौम्य, सुंदर, भक्तिमय, नम्र, कोमल, कृपा से पूर्ण, पवित्रता में समृद्ध, सभी गुणों से पोषित, हर आदर्श से ढकी, ईश्वर को प्रिय है। हम अपनी ओर से जितना हो सके उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। संत थॉमस हमें इस अति सुंदर कल्पना हेतु निमंत्रण देते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं, पवित्र आत्मा ने लेख में उनका जिक्र नहीं किया बल्कि उनकी छवि को हृदय के अंदर रेखांकित करने की प्रतिज्ञा की। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि यही कारण है कि चिंतन प्रार्थना में दुनिया जिन बातों की चर्चा नहीं करती, हम उन्हें देखते हैं, वे पहले से उपस्थित हैं, वे चीजें जो अदृश्य हैं, यद्यपि उनमें एक नई तरह की शक्ति भरी है। यह अपने में कल्पना नहीं है बल्कि यह भविष्यवाणी है, हमें इसकी जरूरत है। जब हम विनाश और अनिश्चितता को पाते हैं, जिससे हम ईश्वर के कार्य को देख सकें और उनकी महिमा कर सकें। संत पापा ने कहा कि छोटे बेतलहम में नबी मीका ने शांति के राजा के आगमन का एहसास किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं जिसकी शांति में हम जीवन यापन करते हैं। आज नन्ही मरियम की ओर आते हुए हम याचना करें कि उनके जन्म का महोत्सव शांति को प्रसारित करे। हम शांति की कामना करते हैं जो हमारे मध्य उपस्थित है, जो सीमाओं और हमारे हृदयों में अंकित है। यह ईश्वर का उपहार है, पुनर्जीवित ईश्वर की सांसें, पवित्र आत्मा के कार्य। आइए हम अपने अंदर शांति को बढ़ने दें, यह विश्व में प्रस्फुटित होगा। और अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम इसकी प्रेरिताई में हमारी सहायता करें।
2: La madre del buon consiglio ci accompagnerà in questa missione.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कार्तिक कलीसिया कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है। संत पापलियो चौदहवें ने इस विशेष दिन की याद करते हुए पर्व के रहस्य पर चिंतन किया। उन्होंने एक संदेश में लिखा, आज हम एक छोटी बालिका के जन्म की खुशी मना रहे हैं, जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की मां बनने के लिए बुलाया जाएगा। फिर भी वे एक छोटी बच्ची के रूप में पैदा हुए हमारी गोद में, हमारी बेटियों और पोतियों की तरह। हम उन्हें सबसे ऊंचा एवं महान नाम देते हैं, जैसे महारानी, सर्वश्रेष्ठ नारी इत्यादि। लेकिन ईश्वर का रास्ता आसान और शांत था और है, यद्यपि वे कम शक्तिशाली और कम परिवर्तनकारी नहीं हैं। पश्चिमी अफ्रीकी युवा दिवस 2026 7 सितंबर को घाना के आगरा में शुरू हुआ। 16 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के युवा कैथलिक इस विषय पर एक साथ एकत्रित हैं। हिम्मत रखें युवा कैथलिक पश्चिम अफ्रीका में शांति और आशा के एजेंट एवं प्रवर्तक। पहले दिन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और घाना की संस्कृति की जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद रोजरी और चिंतन के साथ पौत्र यूखरिस्त की आराधना की गई। मंगलवार 8 सितंबर को युवाओं ने विश्वास में निहित गवाही में सासी विषय वस्तु के हिसाब से विश्वास एवं सांस्कृतिक विषयों पर बात की। ख्रिस्त त्याग के बाद एक कार्यशाला के दौरान डिजिटल सुसमाचार प्रचार, समाचार क्षेत्र में विश्वास, मिशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल विषय वस्तु पर ध्यान दिया गया। फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रतिनिधियों को अपने अपने देशों के संस्कृति, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिला। तीसरे दिन मिशन के लिए सशक्त विषय के तहत नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। धर्मदक्ष के संदेश एवं दिन के वर्कशॉप में दूसरे टॉपिक के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीका में सामाजिक बदलाव में युवाओं की भूमिका, जलवायु न्याय, शांति निर्माण और अफ्रीकी उपक्षेत्रों में आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ एवं लड़ाई जैसे विषयों पर बात होगी। गुरुवार को प्रतिभागी विश्वास एवं सेवा में साथ साथ चलना विषय के तहत तीर्थ यात्रा और एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मिशनरी बुलाहट के बारे में और जानेंगे तथा आगरा की एक पल्ली में मरियम दिवस में हिस्सा लेंगे, जिसमें मरियम पर एक धर्म शिक्षा, वापसी का संस्कार और पौत्र मिसा में भाग लेना शामिल है। मरियम को शांति की रानी और युवाओं के लिए एक आदर्श शिष्य के रूप में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को युवाओं को मिशन पर भेजा जाएगा, जिसकी विषय वस्तु होगी जाओ और आशा को बढ़ने में मदद करो। धर्मदक्ष अपने धर्म उपदेश में उन्हें शांति निर्माता और प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद खाना के प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदक्ष जूलियन कबोरे की अध्यक्षता में पौत्र मिस्सा होगा। अंत में शनिवार 12 सितंबर की सुबह युवा अपने अपने देश लौट जाएंगे और अपने साथ शांति, उम्मीद एवं मेल मिलाप का मिशन ले जाएंगे। पोप लियो चौदहवें ने वेस्ट अफ्रीका के युवाओं को उनके विश्वास की यात्रा में हौसला दी और उन्हें युद्ध एवं संघर्ष से घिरी दुनिया में प्यार, न्याय एवं शांति का संदेश लेकर जीने के लिए आमंत्रित किया। पोप ने घाना के आगरा में पहली बार वेस्ट अफ्रीका युवा दिवस के लिए एकत्रित हजारों युवाओं को अंग्रेजी एवं फ्रेंच में एक वीडियो संदेश दिया। यह कार्यक्रम 7 से 12 सितम्बर को आयोजित है और इसे पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने आयोजित किया है। अपने संदेश में पोप ने 16 देशों के धर्माध्यक्षों की तारीफ की, जिन्होंने युवाओं को अपनी प्रेरिताई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि साथ बिताए ये प्रभावशाली पल आपको विश्वास में बढ़ने और दूसरों से मिलने और खुलेपन जैसे मूल्यों से और भी ज़्यादा बेहतर बनने में मदद करेंगे। पोप ने कहा कि युवा शक, अनिश्चितता और असुरक्षा के बोझ झेलते हैं, जिससे उनके भविष्य की योजना बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब इतने सारे संकट आपके क्षितिज को धुंधला कर रहे हैं, मैं आपको बिना उम्मीद खोए आगे बढ़ने का हौसला देना चाहता हूँ। अपनी मुश्किलों के बावजूद पोप ने वेस्ट अफ्रीकन युवाओं से कहा कि वे बलिदान की पीढ़ी से नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के आज, कलीसिया के आज हैं। उन्होंने पोप बेनेडिक्ट 16वें का जिक्र करते हुए कहा, युवा क्षमताओं, ऊर्जा, सपनों और उम्मीदों से भरपूर होते हैं, और कहा कि उनका युवा होना ही कलीसिया और दुनिया के लिए एक खजाना है। पोप लियो ने युवाओं को अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक साथ चलने की चुनौती का सामना करने हेतु आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा, साथ चलने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अलग थलग, अकेला, एकाकी या बहिष्कृत ना हो। लोग संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बने। उन्होंने कहा कि जैसे यीशु ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचाना, वैसे ही युवाओं को भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और अपनी यात्रा में सभी को शामिल करना चाहिए। पोप ने आगरा में एकत्रित हुए युवाओं से कहा कि कलीसिया उन पर भरोसा करती है और उनकी नैतिकता पर यकीन करती है। उन्होंने कहा, अपने शब्दों और कामों से हमारी दुनिया को एक मजबूत संदेश दें जो हर तरह के युद्धों और झगड़ों से घिरी हुई है। प्यार, न्याय और शांति के गवाह बने। उन्होंने उनसे अपनी कीमती जवानी को बनावटी खुशियों और दिखावे की वेदी पर कुर्बान करने के बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद से आगे बढ़ने की अपील की और उन्हें माता मरियम को सौंप दिया। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलागर ने असीसी में एक सेमिनार को संबोधित किया जिसको सन फ्रांसिस असीसी के निधन की 800वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलागर ने कहा कि सच्ची बातचीत विविधताओं को खत्म नहीं करती बल्कि सहयोग के जरिए उनके एक साथ रहने के लिए परिस्थिति तैयार करती है। यह सेमिनार इस साल संत फ्रांसिस और मेल मिलाप के रास्ते को समर्पित है। सेमिनार असीसी के मेल मिलाप सभागार में संपन्न हुआ और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काथी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी

0: बचा।
1: आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।

0: दाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

तुम्हारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस अपने प्रथम अध्याय को मानवीय सम्मान हेतु समर्पित करते हुए इस बात पर बल देता है कि यह उन मूल्यों और निधियों की आधारशिला है जिन्हें आज सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे मानव हृदय की भ्रष्टता से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों से अपने को दूर करने के क्रम में दिव्य उत्पत्ति से अपने संबंध को ना खोएं। वह यात्रा जिसके द्वारा मूलभूत विशेषताएं और मानवीय सम्मान के अधिकारों को प्रकाशित किया गया है, निश्चित रूप में मानव इतिहास के अति महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को प्रस्तुत करता है। यद्यपि इसका मार्ग आगे अपनी पूर्णता को प्राप्त करने से है और उसे चाहिए कि वह विरोधाभावों को घोषित करे, नए और पुराने दोनों को, जो पूर्णता के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि कलीसिया स्पष्ट रूप में अपना सहयोग देती है, यह याद दिलाते हुए कि मानवीय सम्मान की उपस्थिति व्यक्ति की गरिमा से होती है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने भी फिलहाल के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर जोर दिया है। ईश्वर की योजना और इच्छा यह है कि हम मानव उनके संग, दूसरों के संग और सृष्टि के संग एकता में प्रवेश करें। मानवीय सम्मान व्यक्ति की योग्यताओं, धन या जीवन के ओहदे पर निर्भर नहीं करता है और ना ही सही या गलत चुनाव में ही, बल्कि यह एक उपहार है जो हर व्यक्ति को आगे और अपने से परे ले चलता है, जिसे ईश्वर ने अपने शर्तहीन प्रेम के रूप में प्रदान किया है। मानव जीवन का अनंत सम्मान इस भांति ईश्वर के रूप में बनाए गए एक प्राणी स्वरूप अपनी पहचान में निहित है, जहां वह अपने सृष्टिकर्ता को जानने और उसे प्रेम करने की योग्यता रखता है। एक योजना और प्रेम का उपहार जो उसे श्रेष्ठ अन्य प्राणियों से परे ले चलता है, जो उसकी देख रेख में सौंपी गई है, उन पर अधिकार करो और उनका उपयोग ईश्वर की महिमा हेतु करो। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वास में हम मानवीय सम्मान के मूलभूत तथ्य को समझ सकते हैं, क्योंकि पुत्र पिता के रहस्य और उनके प्रेम के प्रकटीकरण में मानव के संग मानव को पूर्ण रूपेण प्रकट करती और उसकी सर्वोच्च बुलाहट को स्पष्ट करते हैं। हम व्यक्ति में सदैव संबंध, एकता और प्रतिभागिता को पाते हैं जो ईश्वर और दूसरों के संग जुड़ा हुआ है। अतः यह ईश्वर पिता के संग, पुत्रवत और यीशु ख्रीस्त तथा सारी मानवता के संग एक भ्रातृत्वपूर्ण संबंध है। यह हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग करता है।
2: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere.
1: एक व्यक्ति होने की अनुभूति का अर्थ अपने को एक उपहार स्वरूप दूसरों को देना है, स्वीकार्य के मनोभाव में। इस तरह यह आदान प्रदान और सेवा में विकसित होना और प्रौढ़ता को प्राप्त करना है। संत पापा लियो ने कहा कि यह उत्तरदायित्व हर एक को सौंपा गया है। वहीं यह हमसे एकता और आपसी देख रेख की मांग करती है, जिसके द्वारा हम कई असत्यों और तोल मोलों पर विजयी होते हैं, जो आज भी इसके संबंध में हमारी समझ को विकृत करती और इसके कार्यान्वयन में बाधक बनती है। वास्तव में इतिहास में लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो इस सम्मान के विरुद्ध गए, यहाँ तक कि आज भी मनुष्य अंदर से अपने में विभाजित है और मानव का सारा जीवन, चाहे वह व्यक्तिगत या सामुदायिक क्यों ना हो, अपने को अच्छाई और बुराई तथा ज्योति और अंधकार के मध्य संघर्ष करता पाता है। यह क्षणभंगुर और सीमित स्थिति यद्यपि अपने में आशा से देखी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मानव को मुक्ति और शक्ति प्रदान करने आए, उसे अंदर से नवीन करने और इस दुनिया के राजा को हराने हेतु जो उसे पापों में बंधक बनाए रखता है। इससे भी बढ़कर धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस इस बात को सुदृढ़ करता है कि मानवीय सम्मान का तात्पर्य पूरे व्यक्ति से है, और इसलिए हमें दोहरे नजरिए से आगे जाने की जरूरत है। यद्यपि मानव शरीर और आत्मा है, वह अपने में एक है। शरीर को एक वस्तु तक सीमित करना, उसके संग स्वच्छंदता से पेश आना हमेशा व्यक्ति की गरिमा का अपमान करना है। शरीर से घृणा करना मानव के लिए अस्वीकार्य है, और उससे इस बात की मांग की जाती है कि वह उसकी देखरेख अच्छी तरह और आदर से करे, क्योंकि ईश्वर ने उसका निर्माण किया है और वे उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करेंगे। वहीं हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह हृदय के बुरे रुझानों का गुलाम ना हो, क्योंकि हम सभी पाप से अपने को घायल पाते हैं। अंततः संत पापा लियो ने कहा कि मानवीय सम्मान के संबंध में गौडियम एट स्पेस तीन अति महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाती है। बुद्धिमता, जो मानव को सच्चाई की खोज से संबंधित असंतोष में जिज्ञासु बनाती है। अंतःकरण, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को एकता और अर्थ प्रदान करता है। और स्वतंत्रता, जिसके द्वारा वह अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। इन आयामों को हम एक दूसरे के संग निकटता से संयुक्त पाते हैं। यह अंतःकरण है जहां सच्चाई की पहचान होती है जैसे कि वह है, और स्वतंत्रता उसे मौलिकता और संभावना के रूप में अनुभव करती है। पवित्र आत्मा, जो ख्रिस्त में जीवन प्रदान करते हैं, हमें स्वतंत्र करते और ईश्वरीय संतान स्वरूप निरंतर हमारे सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। वे हमें भय से बचाते और अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, जहां हम जीवन की परिपूर्णता को मृत्यु से परे पाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा ख्रिस्त ने हमारे लिए की है।
2: Solo in lui trova vera luce il mistero dell'uomo.
1: यह केवल वे हैं जिनमें मानव जीवन का रहस्य अपनी सच्ची ज्योति को प्राप्त करता है। उन्हीं से हम दुख और मृत्यु के रहस्य को समझने हेतु आलोकित होते हैं, और उन्हीं के संग हम पुनरुत्थान की ओर यात्रा करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर के रूप में बनाए गए यीशु ख्रिस्त में और उनके खातिर हमने एक अद्वितीय और अमिट सम्मान को पाया है। आइए हम सुसमाचार की ज्योति और शक्ति के साथ सदैव इसे बढ़ावा दें और इसकी रक्षा करने का संकल्प करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। इस आंदोलन को औपचारिक रूप से मरिया का काम के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1942 में इटली की क्यारा लुबिक ने की थी। अपने संबोधन में संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्षों की यह मुलाकात फोकोलारे आंदोलन के दोस्तों के तौर पर उनके आपसी स्नेह को दर्शाती है, क्योंकि वे अलग अलग देशों और सामाजिक परिवेश से आते हैं। संत पापा लियो ने एकता की गवाही देने पर उनके ध्यान की सराहना की और कहा, एकता का विषय उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, आज के दौर में जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, हमारे प्रभु ने क्यारा लुबिक को एकता की भावना और सेवा की गवाही देने में सक्षम बनाया, जिससे वह अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। संत पापा ने कहा कि कलीसिया यह जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने उन पूर्वाग्रहों, नस्लवाद, धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का जिक्र किया जिनका सामना धर्माध्यक्ष अपने देशों में करते हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में परिवार, दोस्ती और समुदाय के जो नेटवर्क पहले मजबूत हुआ करते थे, वे अब बुरी तरह से बिखर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी के तौर पर पेश किया जाता है, ताकि लोग बिना किसी नैतिक, प्राकृतिक या मानवीय सीमा के खुशी की तलाश कर सकें। संत पापा लियो ने कहा, दूसरों के प्रति खुलेपन की कमी हमारी एकता की भावना को खराब करती है और वास्तव में हमारी खुशी को छीन लेती है, जिसे संत पापा ने कहा कि हम केवल त्रिएक ईश्वर के साथ एकता में पाते हैं। पिता के हृदय को प्रकट करके मसीह हमें हमारे अस्तित्व, हमारे रिश्तों और खुशी मार्ग का सबसे गहरा अर्थ दिखाते हैं। आत्मा के उपहार के माध्यम से हम ईश्वर की संतान, दिव्य जीवन के भागीदार बन गए हैं। मसीह में ईश्वर की संतान के रूप में अपनी सहभागिता को अपनाकर हम कलीसिया की सहभागिता के रहस्य में भाग लेते हैं और हमारी दुनिया में खमीर और एकता के संकेत के रूप में कार्य करते हैं। अंत में संत पापा ने फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों को मानव परिवार की इस लंबे समय से चली आ रही एकता का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया। और मंगलवार 8 सितंबर को नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया डिंग यांग का धर्माध्यक्ष अभिषेक किया गया। 28 जुलाई 2026 को संत पापा लियो 14वें ने उन्हें चोंगकिंग का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति परम धर्म पीठ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच हुए अस्थायी समझौते के तहत उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी मिलने के बाद की गई। महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया का जन्म 16 सितंबर 1981 को चोंगकिंग के हेचुआन जिले में हुआ। 2000 से 2006 तक उन्होंने बीजिंग के सेमिनरी में पढ़ाई की। 14 मई 2007 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। इसके बाद उन्होंने उसी पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा दी। 2012 से 2014 तक उन्होंने बीजिंग में राष्ट्रीय सेमिनरी के प्रशिक्षक के तौर पर काम किया। मार्च 2014 में वे रोम चले गए। वहां उन्होंने होली क्रॉस परम धर्म पीठ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अगले साल चीन वापस लौटे। बाद में उन्होंने चोंगकिंग महाधर्म प्रांत की अनेक पल्लियों में पल्ली पुरोहित के तौर पर अपनी सेवा दी। आज 9 सितंबर हमलों से शिक्षा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ याद दिलाता है कि दुनिया भर में संकटों की वजह से 93 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2005 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में स्कूलों पर 15,000 से अधिक हमलों की पुष्टि की। अकेले 2025 में विश्व स्तर पर स्कूलों पर 1,600 से अधिक हमले हुए हैं। इसका प्रभाव न केवल शिक्षा तक पहुंच पर बल्कि सीखने पर भी पड़ता है।
संघर्ष प्रभावित देशों के 90% से अधिक बच्चे 10 वर्ष की आयु तक साधारण पाठ पढ़ने में असमर्थ होते हैं। स्कूल से दूर बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल मजदूरी, कम उम्र में शादी, बेघर होना और हथियारबंद गुट द्वारा भर्ती जैसे सुरक्षा के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शिक्षा को बचाने की जरूरत को पहचाना। आज तक 123 देशों ने सुरक्षित स्कूलों पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हथियारबंद लड़ाई के असर से बचाने और मुश्किल समय में भी पढ़ाई जारी रखने का वादा करता है। उधर उत्तर कोरिया और रूस के बीच पहला सड़क संपर्क पिछले सोमवार को दोनों देशों के बीच सीमा पर एक पुल का उद्घाटन किया गया, जिसे यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ बढ़ते सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। बुनियादी ढांचा तुमेन नदी तक फैला है, जो उनकी साझा सीमा को चिन्हित करता है, एक सीमा जो अपनी सीमित क्षेत्रीय सीमा के बावजूद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर कोरिया रूस के साथ केवल 17 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है, जो उत्तरी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है जो 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है और बड़े पैमाने पर चीन के साथ साझा करती है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किए जाने के बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच संबंध काफी बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस के कुर्स्क इलाके, जो यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट से सटा हुआ है, में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी और कीव के खिलाफ रूसी सैन्य अभियानों में मदद के लिए सप्लाई भेजे जाने की खबरें बार बार आई हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया, जो प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहता है, उसे मॉस्को से लगातार आर्थिक मदद, भोजन, ऊर्जा और सैन्य तकनीक मिलती रहती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

Tekrata,

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस अपने प्रथम अध्याय को मानवीय सम्मान हेतु समर्पित करते हुए इस बात पर बल देता है कि यह उन मूल्यों और निधियों की आधारशिला है जिन्हें आज सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे मानव हृदय की भ्रष्टता से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों से अपने को दूर करने के क्रम में दिव्य उत्पत्ति से अपने संबंध को ना खोएं। वह यात्रा जिसके द्वारा मूलभूत विशेषताएं और मानवीय सम्मान के अधिकारों को प्रकाशित किया गया है, निश्चित रूप में मानव इतिहास के अति महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को प्रस्तुत करता है। यद्यपि इसका मार्ग आगे अपनी पूर्णता को प्राप्त करने से है और उसे चाहिए कि वह विरोधाभावों को घोषित करे, नए और पुराने दोनों को, जो पूर्णता के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि कलीसिया स्पष्ट रूप में अपना सहयोग देती है, यह याद दिलाते हुए कि मानवीय सम्मान की उपस्थिति व्यक्ति की गरिमा से होती है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने भी फिलहाल के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर जोर दिया है। ईश्वर की योजना और इच्छा यह है कि हम मानव उनके संग, दूसरों के संग और सृष्टि के संग एकता में प्रवेश करें। मानवीय सम्मान व्यक्ति की योग्यताओं, धन या जीवन के ओहदे पर निर्भर नहीं करता है और ना ही सही या गलत चुनाव में ही, बल्कि यह एक उपहार है जो हर व्यक्ति को आगे और अपने से परे ले चलता है, जिसे ईश्वर ने अपने शर्तहीन प्रेम के रूप में प्रदान किया है। मानव जीवन का अनंत सम्मान इस भांति ईश्वर के रूप में बनाए गए एक प्राणी स्वरूप अपनी पहचान में निहित है, जहां वह अपने सृष्टिकर्ता को जानने और उसे प्रेम करने की योग्यता रखता है। एक योजना और प्रेम का उपहार जो उसे श्रेष्ठ अन्य प्राणियों से परे ले चलता है, जो उसकी देख रेख में सौंपी गई है, उन पर अधिकार करो और उनका उपयोग ईश्वर की महिमा हेतु करो। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वास में हम मानवीय सम्मान के मूलभूत तथ्य को समझ सकते हैं, क्योंकि पुत्र पिता के रहस्य और उनके प्रेम के प्रकटीकरण में मानव के संग मानव को पूर्ण रूपेण प्रकट करती और उसकी सर्वोच्च बुलाहट को स्पष्ट करते हैं। हम व्यक्ति में सदैव संबंध, एकता और प्रतिभागिता को पाते हैं जो ईश्वर और दूसरों के संग जुड़ा हुआ है। अतः यह ईश्वर पिता के संग, पुत्रवत और यीशु ख्रिस्त तथा सारी मानवता के संग एक भ्रातृत्वपूर्ण संबंध है। यह हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग करता है।
2: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere.
1: एक व्यक्ति होने की अनुभूति का अर्थ अपने को एक उपहार स्वरूप दूसरों को देना है, स्वीकार्य के मनोभाव में। इस तरह यह आदान प्रदान और सेवा में विकसित होना और प्रौढ़ता को प्राप्त करना है। संत पापा लियो ने कहा कि यह उत्तरदायित्व हर एक को सौंपा गया है। वहीं यह हमसे एकता और आपसी देख रेख की मांग करती है, जिसके द्वारा हम कई असत्यों और तोल मोलों पर विजयी होते हैं, जो आज भी इसके संबंध में हमारी समझ को विकृत करती और इसके कार्यान्वयन में बाधक बनती है। वास्तव में इतिहास में लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो इस सम्मान के विरुद्ध गए, यहाँ तक कि आज भी मनुष्य अंदर से अपने में विभाजित है और मानव का सारा जीवन, चाहे वह व्यक्तिगत या सामुदायिक क्यों ना हो, अपने को अच्छाई और बुराई तथा ज्योति और अंधकार के मध्य संघर्ष करता पाता है। यह क्षणभंगुर और सीमित स्थिति यद्यपि अपने में आशा से देखी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मानव को मुक्ति और शक्ति प्रदान करने आए, उसे अंदर से नवीन करने और इस दुनिया के राजा को हराने हेतु जो उसे पापों में बंधक बनाए रखता है। इससे भी बढ़कर धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस इस बात को सुदृढ़ करता है कि मानवीय सम्मान का तात्पर्य पूरे व्यक्ति से है, और इसलिए हमें दोहरे नजरिए से आगे जाने की जरूरत है। यद्यपि मानव शरीर और आत्मा है, वह अपने में एक है। शरीर को एक वस्तु तक सीमित करना, उसके संग स्वच्छंदता से पेश आना हमेशा व्यक्ति की गरिमा का अपमान करना है। शरीर से घृणा करना मानव के लिए अस्वीकार्य है, और उससे इस बात की मांग की जाती है कि वह उसकी देखरेख अच्छी तरह और आदर से करे, क्योंकि ईश्वर ने उसका निर्माण किया है और वे उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करेंगे। वहीं हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह हृदय के बुरे रुझानों का गुलाम ना हो, क्योंकि हम सभी पाप से अपने को घायल पाते हैं। अंततः संत पापा लियो ने कहा कि मानवीय सम्मान के संबंध में गौडियम एट स्पेस तीन अति महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाती है। बुद्धिमता, जो मानव को सच्चाई की खोज से संबंधित असंतोष में जिज्ञासु बनाती है। अंतःकरण, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को एकता और अर्थ प्रदान करता है। और स्वतंत्रता, जिसके द्वारा वह अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। इन आयामों को हम एक दूसरे के संग निकटता से संयुक्त पाते हैं। यह अंतःकरण है जहां सच्चाई की पहचान होती है जैसे कि वह है, और स्वतंत्रता उसे मौलिकता और संभावना के रूप में अनुभव करती है। पवित्र आत्मा, जो ख्रिस्त में जीवन प्रदान करते हैं, हमें स्वतंत्र करते और ईश्वरीय संतान स्वरूप निरंतर हमारे सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। वे हमें भय से बचाते और अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, जहां हम जीवन की परिपूर्णता को मृत्यु से परे पाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा ख्रिस्त ने हमारे लिए की है।
2: Solo in lui trova vera luce il mistero dell'uomo.
1: यह केवल वे हैं जिनमें मानव जीवन का रहस्य अपनी सच्ची ज्योति को प्राप्त करता है। उन्हीं से हम दुख और मृत्यु के रहस्य को समझने हेतु आलोकित होते हैं, और उन्हीं के संग हम पुनरुत्थान की ओर यात्रा करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर के रूप में बनाए गए यीशु ख्रिस्त में और उनके खातिर हमने एक अद्वितीय और अमिट सम्मान को पाया है। आइए हम सुसमाचार की ज्योति और शक्ति के साथ सदैव इसे बढ़ावा दें और इसकी रक्षा करने का संकल्प करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। इस आंदोलन को औपचारिक रूप से मरिया का काम के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1942 में इटली की क्यारा लुबिक ने की थी। अपने संबोधन में संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्षों की यह मुलाकात फोकोलारे आंदोलन के दोस्तों के तौर पर उनके आपसी स्नेह को दर्शाती है, क्योंकि वे अलग अलग देशों और सामाजिक परिवेश से आते हैं। संत पापा लियो ने एकता की गवाही देने पर उनके ध्यान की सराहना की और कहा, एकता का विषय उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, आज के दौर में जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, हमारे प्रभु ने क्यारा लुबिक को एकता की भावना और सेवा की गवाही देने में सक्षम बनाया, जिससे वह अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। संत पापा ने कहा कि कलीसिया यह जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने उन पूर्वाग्रहों, नस्लवाद, धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का जिक्र किया जिनका सामना धर्माध्यक्ष अपने देशों में करते हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में परिवार, दोस्ती और समुदाय के जो नेटवर्क पहले मजबूत हुआ करते थे, वे अब बुरी तरह से बिखर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी के तौर पर पेश किया जाता है, ताकि लोग बिना किसी नैतिक, प्राकृतिक या मानवीय सीमा के खुशी की तलाश कर सकें। संत पापा लियो ने कहा, दूसरों के प्रति खुलेपन की कमी हमारी एकता की भावना को खराब करती है और वास्तव में हमारी खुशी को छीन लेती है, जिसे संत पापा ने कहा कि हम केवल त्रिएक ईश्वर के साथ एकता में पाते हैं। पिता के हृदय को प्रकट करके मसीह हमें हमारे अस्तित्व, हमारे रिश्तों और खुशी मार्ग का सबसे गहरा अर्थ दिखाते हैं। आत्मा के उपहार के माध्यम से हम ईश्वर की संतान, दिव्य जीवन के भागीदार बन गए हैं। मसीह में ईश्वर की संतान के रूप में अपनी सहभागिता को अपनाकर हम कलीसिया की सहभागिता के रहस्य में भाग लेते हैं और हमारी दुनिया में खमीर और एकता के संकेत के रूप में कार्य करते हैं। अंत में संत पापा ने फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों को मानव परिवार की इस लंबे समय से चली आ रही एकता का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया। और मंगलवार 8 सितंबर को नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया डिंग यांग का धर्माध्यक्ष अभिषेक किया गया। 28 जुलाई 2026 को संत पापा लियो 14वें ने उन्हें चोंगकिंग का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति परम धर्म पीठ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच हुए अस्थायी समझौते के तहत उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी मिलने के बाद की गई। महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया का जन्म 16 सितंबर 1981 को चोंगकिंग के हेचुआन जिले में हुआ। 2000 से 2006 तक उन्होंने बीजिंग के सेमिनरी में पढ़ाई की। 14 मई 2007 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। इसके बाद उन्होंने उसी पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा दी। 2012 से 2014 तक उन्होंने बीजिंग में राष्ट्रीय सेमिनरी के प्रशिक्षक के तौर पर काम किया। मार्च 2014 में वे रोम चले गए। वहां उन्होंने होली क्रॉस परम धर्म पीठ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अगले साल चीन वापस लौटे। बाद में उन्होंने चोंगकिंग महाधर्म प्रांत की अनेक पल्लियों में पल्ली पुरोहित के तौर पर अपनी सेवा दी। आज 9 सितंबर हमलोंग से शिक्षा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ याद दिलाता है कि दुनिया भर में संकटों की वजह से 93 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2005 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में स्कूलों पर 15,000 से अधिक हमलों की पुष्टि की। अकेले 2025 में विश्व स्तर पर स्कूलों पर 1,600 से अधिक हमले हुए हैं। इसका प्रभाव न केवल शिक्षा तक पहुंच पर बल्कि सीखने पर भी पड़ता है।
संघर्ष प्रभावित देशों के 90% से अधिक बच्चे 10 वर्ष की आयु तक साधारण पाठ पढ़ने में असमर्थ होते हैं। स्कूल से दूर बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल मजदूरी, कम उम्र में शादी, बेघर होना और हथियारबंद गुट द्वारा भर्ती जैसे सुरक्षा के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शिक्षा को बचाने की जरूरत को पहचाना। आज तक 123 देशों ने सुरक्षित स्कूलों पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हथियारबंद लड़ाई के असर से बचाने और मुश्किल समय में भी पढ़ाई जारी रखने का वादा करता है। उधर उत्तर कोरिया और रूस के बीच पहला सड़क संपर्क पिछले सोमवार को दोनों देशों के बीच सीमा पर एक पुल का उद्घाटन किया गया, जिसे यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ बढ़ते सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। बुनियादी ढांचा तुमेन नदी तक फैला है, जो उनकी साझा सीमा को चिन्हित करता है, एक सीमा जो अपनी सीमित क्षेत्रीय सीमा के बावजूद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर कोरिया रूस के साथ केवल 17 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है, जो उत्तरी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है, जो 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है और बड़े पैमाने पर चीन के साथ साझा करती है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किए जाने के बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच संबंध काफी बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस के कुर्स्क इलाके, जो यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट से सटा हुआ है, में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी और कीव के खिलाफ रूसी सैन्य अभियानों में मदद के लिए सप्लाई भेजे जाने की खबरें बार बार आई हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया, जो प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहता है, उसे मॉस्को से लगातार आर्थिक मदद, भोजन, ऊर्जा और सैन्य तकनीक मिलती रहती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।